0: sa smije, ko sam zadovoljstvo neka dola.
1: मजबूर होने के कारण लड़ा रहे थे। कहने से हम लोग के स्थानीय सरकारों का दोस्त नहीं है।

समाधान सबसे छत्ता उठता केंद्र माने जा रहा है। इसलिए उन्होंने एक जीवन बचाए भारी मदद करता विश्वास करना वो सही जानकारी पैसा को रख उपचार केंद्र करना एक पता लगा गया अधिकारिक रूप से इसमें बैंक नेपाल डॉट ओ आर जी में जाकर आवश्यक

0: Yayasan. Bhaktiyan ko Bariyatal Gaon Palika Saath Purvurka Aishwari Prasad Thar ko Bari Maa Eti Bila Lathrum Maa Tarpuzali Faleko Sa 2046 Saal Maa Khi Pyavasai Prakari Kheti Maa Lagpa Khai Gaon Maa Aile Gaon Khai Sapurda Namuna Kisan Karup Maa Chini Nuhuncha. Suno, Kisan Aishwari Prasad Thar ko Sapal Tako Kata Saathi Anus Thar Bata.
1: बरियाताल गांव पालिका साथ पुरपोटे ईश्वरी प्रसाद थारू की बहनी की आजकल अपनी बारी में काम करके बीती रात बात लंबा समय के से तरकारी खेती में काम करती रही किशोरी अब एक तरबूजा खेती के व्यवसाय रूप में विस्तार करते रात बाते
2: पालिका से देखे बिहार 50% अनुदान प्राप्त करे बटवे थे।

लाग्छ आमदानी पहिले तीस रुपियाँ पर्छ तर उसले खेती से फिर उतनी आमदानी बिना आपके छक्कर लगाते हैं अपने मेहनत से लड़का बच्चन नाती नाती बोरिंग स्कूल पढ़ेंगे के संगे घर खर्च चला गया किक आगे हाथ मुख्य जोड़े हुए ईश्वरी प्रसाद थाल के जाने और सफलता ने कृषि में भविष्य खोजने अन्य युवा मुखन के लिए एक ठोक परिवार प्रेरणा देता अनुज

स्थानीय जनपद प्रतिनिधि तथा न्यायिक समिति संग सम्पर्क गराउनुहोस्।

संबंधित भर पद्म सुनिता प्राप्त करा उद्योग सात वर्ष उपचार के तहत भाई

शांत होई सत्री खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिरा में से दूर रही तनाव नियंत्रण करी आज निर्भय कार्य जीवन अंतराल निशाना रोग से बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुवार एफएम का सहकार्य स्वास्थ्य

0: अवस्थ भविष्य निर्माण करने समय हो। लागू पदार्थ को एक पटक को पड़ोगे पनि गलत मानसिक समस्या र पढ़ाई में असर पुर्याउन सक्छ। साथी को दबाव में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय गरौं। तनाव भए खुला कुरा गरौं। समाधान लागू पदार्थ होइन, लागू पदार्थ टाढा बसौं। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य रोजौं।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकारी में स्वास्थ्य कार्यालय पर्तियाबाट जनहित में जारी सन्देश।
2: संस्थाबाट कर्ज लिइसकेपछि तोकिएको शर्त बमोजिम कर्ता भुक्तानी गर्नु ऋणको कानुनी र नैतिक दायित्व हो।
1: यदि वित्तीय सम्बन्धी तपाईँको केही गुनासो छ भने तपाईँको पैसा लगाउने फोन नम्बर 18 10

में भेदता उतरी। नीम स्वास्थ्य कला ढेर मिली फायदाजनक पद्य हो हमार शरीर छाया तथा कपारी मफी अत्यंत फायदाजनक विभाग रूप में हेन प्रयोग कर सेग्नेटो कर्तिफी एनबाट कस्करी नगर पालिका सात चौधरी एकजना महिला फिर फायदा बढ़े।

जिसका खाना नियमित रूप में खाए जंक फूड कम करे संतुलित खाना खाना रोजे स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का भार हो रेडियो गुरुबाबा एफएम सहकार्य स्वास्थ्य कार्य में प्रत्याशी संदेश।

0: ஆயிரம்
1: नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो। रेडियो पूर्वाधार एवं

सारा की माध्यमिक विद्यालय प्रशासन 87.687 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण करेन बाट उसैको पृथ्वी माध्यमिक 85.71 प्रतिशत मेरा माध्यमिक मार्क्स गरे 5.85 मेरा माध्यमिक मार्क्स गरे 85.16 प्रतिशत

0: क्षमता उसे जिला का पदाधिकारी मूर्ति पुर से खंडपुर पास नगर पालिका पास रामपुर व सोनपुर से निशांत कुमार हरा नियंत्रण माजरपा पुलिस सहित 40 मिलीग्राम खैरपुर पदार्थ बरामद गलत पदाधिकारी लगा 170 मिलीग्राम गलत पदार्थ
1: सामी

यह कार्यक्रम एचसीटी का सहयोग में संचालित मैनेजर कार्यक्रम अंतर्गत यूके मेड ऑफिस को बीबीसी मीडिया एक्शन का सहकार्य गुमला भारत में स्वतंत्र रूप में उत्पादन कर रहा हो।

0: बेटा नीलम लग रहा थे जब जिस चाची में से तो सामान का टपा रहा हो तीन लाख ऋण ले रहा हूँ तीन लाख से ढेर तीर से को अब मत तीर करना परिवार का था
1: और अपना तीन लाख रुपया ऋण ले रहा थी तीन लाख रुपया चिंता कैसे करवा दी ऋण लेकर कई प्रतिशत ब्याज तीर पर इतना तो अपना था हुआ और से अपना सारा ब्याज रहेगा तीन लाख रुपया से ढेर तीर करना भी
0: हम अलग सातों का पाल रहने गए घर नियम पुरस्कार जितना बहुत कम होना खस्ता और ब्याज मिला अभी देखा कर्जा भुगतान

0: जिल्लाधिकारी श्री अनुभवी भट्टराईले सीआईएम छोड़ बताउनुभयो।
1: Thank you.

किया कि सर आप घर में कुछ शिक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री सचिव पोखरिया माध्यमिक शिक्षा परिषद एस टी ईमान विद्यार्थी के अभी पूरा परिचय तैयारी कक्षा संचालन

0: बाबा गणेश प्रसाद भट्टी कुछ महीना दया समझ भरी खुला पानी का लेकर महीना समझे तब कहने पड़ेगा तब से हमारा तब पक पड़ी वहाँ काम नहीं करता हूँ ऐसे बाबा के खुला पानी काम अपना बोल रहा था
1: कठिन कठिन लसुन कठिन

ये सब कर दूसरे प्रश्न होते हैं कि उन्हें पानी चौथी बंद खराब करेगा तब वो कुआ नहीं सफा हो गया वो कारण कुआ पानी जो भी चुनाव है वो चुनाव चुनाव करेगा काम हो रहा ताकि वो कुआ पानी चौथी कुआ को चलना ले पाए पहले तक का चंद्रकाल में सबसे तेजी से सफा हो पाएगा चारों लोगों का देखो आदित परिसर के प्रकाश

0: कन्या हो सकता अपने चुप से अपना पूरा बना देते अस्सी को सुन प्रसाद सातम पांच प्रसाद दिए बच्चे से किसान हो आपको दूसरा बना संतान ग्रह समी स्वयं को बहुत सुन प्रसाद अपने मन छिया मन बदल
1: सुनेंगे